एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सख संवत 1948 के अश्विन माह की 11वीं तिथि तदनुसार 3 अक्टूबर 2026। अब हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

तेलंगू पर इस समय हुआ है इस घंटे की मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मुच्छार की बहादुरी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी क्षेत्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, वैश्विक बागवानी क्षेत्र से रायल सीमा के किसानों को फायदा होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जी सेवन देशों ने तेल और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। G7 और सहयोगी देश अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करेंगे। पाकिस्तान सरकार और जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेताओं के बीच आज फिर बातचीत होगी। वे कल भी मिले थे और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आज फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस में कल शिक्षा के स्तर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने 700 से ज्यादा स्कूलों को बाधित कर दिया और इस दौरान उनकी पुलिस से भी झड़प हुई। एशियाई खेलों में पुलिस ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुड्डा, लवलीन बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM band 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना के साथ।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज सुबह 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। भोले मिश्र जी सुनिएगा सुबह 6:40 पर। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह सुनिएगा 7 बजे से। सुबह 7:05 पर समय होगा कृषि संकेत का। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आज सुबह 7:10 पर। मन चाहे गीत सुनिएगा सुबह 7:20 पर।

संगीत सरिता सुनिएगा सुबह 7:45 पर, सुबह 8 बजे से सुनिएगा समाचार प्रभात, लोक संगीत सुनिएगा आज सुबह 8:15 पर, चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 8:30 पर, सुबह 9 बजे से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे, जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे से, सुबह 10:05 पर सुनिएगा चिट्ठी से लोकगीत कार्यक्रम, ग्राम लक्ष्मी सुनिएगा आज सुबह 10:30 पर, विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुनिएगा आज सुबह 11 बजे से, दोपहर समाचार सुनिएगा दोपहर 2:15 पर, विविध भारती सेवा के कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से रिले होंगे, शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवावाणी, संगीत सरिता का समय होगा शाम 5:30। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुनेगा शाम 6 बजे से, सदाबहार गीत सुनेगा शाम 6:30 पर, लोक रंग सुनेगा शाम 6:45 पर, प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 7:10 पर, कार्यक्रम लोक रंग सुनेगा आज शाम 7:20 पर, कार्यक्रम किसान वाणी सुनेगा आज शाम 7:30 पर, जिसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे से सुनिएगा चित्रपट संगीत, आज रात्रि 8:20 पर सुनिएगा संगीत सरिता, मन चाहे गीत सुनिएगा रात्रि 9 बजे से, विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:30 पर, एशियन गेम्स 2026 हाईलाइट सुनिएगा रात्रि 10 बजे से, रात्रि 10:20 पर सुनिएगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, रात्रि 11 बजे से सुनिएगा हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, स्वर कविता कृष्णमूर्ति।

राजा दशरथ के महल में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उन्मुख हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में सुनिए शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है आग। गीत लिखा है बेइज्जत लखनवी ने, संगीत दिया है राम गांगुली ने।

0: ले हाय राम होय होय
1: चंदो ले हाय राम हाय हाय चंदो ले हाय राम हाय हाय चंदो ले हाय राम
0: चक्की लागी तुक्के नगरिया छोला परती भई उमरिया छोला परती भई उमरिया
1: छोला परती

0: कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का, तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। लीजिए सुनिए आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है CID, गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत दिया है OP नैयर ने।

लीजिए अब सुनिए गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज में। गीत फिल्म का नाम है देवदास। गीत लिखा है साहिब ने, संगीत दिया है एस डी वर्मन ने।

इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ह्यः भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मिथ मछर इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। सह चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् अशीत्यधिकैकशतं यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृत विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमंत्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्री मोदी अवदत् यत् संपूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्य लाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मिथः साहसेन यथा समयं उचित निर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमंत्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमंत्रिणः दूरभाष संवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान देने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर को इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। नहीं तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका देश से मिलवोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रिणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेण अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: केंद्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलंबी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारण क्षेत्र द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि 6 पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
3: नमस्कार, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। स्वीकार कीजिए ऋचा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है।

आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी भी हमारे कदम लड़खड़ा सकते हैं। आत्मविश्वास में वो ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा से भरा है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए खुद पर विश्वास बनाए रखने होगा। आत्मविश्वास में वो शक्ति है जिसके माध्यम से हमें कठिन कार्य भी आसान लग सकते हैं। आत्मविश्वास से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है और इसी संकल्प शक्ति से हमारी आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। आत्मविश्वास की शक्ति के कारण ही एक नन्ही चिड़िया कण कण जोड़ कर अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया का ये घोंसला उसके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, बस जरूरत है कि हम अपनी उस खास बात को पहचान कर निखार सकें। यदि हम सही दिशा में प्रयास करें, अपनी खासियत को पहचान लें, तो हमारा प्रयास सफल जरूर होगा। और सही तरीके से प्रयास करें तो हमारा आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास हमारे अंदर ही समाहित होता है, बस जरूरत है अपने आत्मविश्वास को जगाने की और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की, क्योंकि आत्मविश्वास में कमी आने का सबसे बड़ा कारण हमारे नकारात्मक विचार ही हैं। हमें अपनी संगत भी उन्हीं लोगों के साथ करनी चाहिए जो कि हमारा मनमल बनाते हैं। कहा भी जाता है कि संगत का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है और अच्छी संगत से हमारे आत्मविश्वास के निर्माण में भी सहायता मिलती है। कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही।

0: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है पटल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
3: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सोनी सोनी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
4: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर न्यूज ऑन AIR।
3: न्यूज ऑन AIR?
4: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
3: अरे वाह माँ, कमाल है।
5: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। विषय है दुग्ध में फैट प्रतिशत कैसे बढ़ाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर बीके शर्मा।
6: आज की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में
7: देखिए, जो भी पशुपालक फैट परसेंटेज से दूध का विक्रय कर रहे हैं, या घर पे भी दूध उपयोग कर रहे हैं, या घी बना रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी गाय में

0: बहुत पतला दूध आ रहा है, तो इसके बहुत सारे सिंपल से कारण आपको स्पष्ट बता देते हैं। एक ही फंडा है जिसमें आप बढ़िया फैट ले सकते हैं। देखिए, कैल्शियम की अगर कमी होगी तो फैट डाउन होगा, मैग्नीशियम की कमी होगी तब भी फैट डाउन होगा। मतलब हम अगर मिनरल्स की बात करें, ट्रेस मिनरल्स की बात करें, तो अगर आपकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण भी आपका दूध बिल्कुल पतला आएगा, क्योंकि उसमें जो भी दूध बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं उनकी पूर्ति आपकी गाय में वैसे ही कमी है, तो आप मिनरल मिक्सर शुरू कर दें। और दूसरा, मिनरल मिक्सर जब भी कोई भी पशुपालक शुरू करे, जब भी कोई डॉक्टर बताए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिनरल मिक्सर शुरू करने के पहले आपको कृमिनाशी दवाई एक दिन पहले अवश्य गाय को खिलाना है। यदि आपकी गाय बढ़िया 300 से 400 किलो वजन की है तो 3000 mg की एल्बेंडाजॉल, सुप्राजॉल, मेबेंडाजॉल, ऐसी जो आइवरमेक्टिन हाईटेक टैबलेट है जो आती है 100 mg की, तो वो भी हम खिला सकते हैं, या 120 mg तक भी हम आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, जिससे कि उसकी डीवर्मिंग हो। क्योंकि जब तक वर्म्स क्लियर नहीं होंगे पेट के और आपने मिनरल मिक्सचर शुरू किया, तो वो जो कृमि है उनका स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और वो मिनरल मिक्सचर आपकी गाय को नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो प्रत्येक 3 माह में, बड़ी गाय अगर है तो प्रत्येक 3 माह में आपको हर मौसम के, जब भी बदलाव होता है, 3 मौसम है उसमें कम से कम 4 बार, आप अगर 3-3 महीने में भी करते हैं तो साल में 4 बार आपको कृमिनाशी दवाई देना है। 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर हमेशा देते रहें और कम से कम 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर उस समय जरूर दें जब आपकी गाय गाभिन थी। आप मिनरल मिक्सचर नहीं भी दे रहे हैं, आपने कृमिनाशी दवाई दे दी है और आप खली चुनी दे रहे हैं, और अगर आपने कैल्शियम दिया तो निश्चित मान के चलिए कैल्शियम से ये होगा, खाने का चूना मैंने आपको बताया है 15 रुपए किलो का बाजार में उपलब्ध होता है, उसको मटके में गलाएं 5-6 किलो, जैसे ही आप भूसा डालते हैं खोनेटे में उसके ऊपर 1 गिलास घुला हुआ, मतलब मठा जैसा अपना होता है, ऐसा 1 गिलास भर के आप यदि प्रतिदिन गाय को ये आपका कैल्शियम देना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी गाय में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये फैट बढ़ाने के लिए आप कंसंट्रेशन जरूर दें, लेकिन अगर आप सिर्फ भूसा खिला रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे हैं और आपका प्रश्न फैट का है, तो फिर संभव ही नहीं है कि फैट कैसे आए। दूसरा, हमने आपको एक और बताया था कि फैट परसेंटेज अगर आपको अपने मिल्क में चाहिए बिना कुछ परिवर्तन के चाहिए, तो आकाशवाणी के माध्यम से पहले भी कई बार प्रसारित हो चुका है, तो एक सरल उपाय यह है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल तरीका बदलना है कि जब आप अपनी बछिया को छोड़ते हैं, तो जब पाना छोड़ने के लिए शुरू में जब गाय लगाने जाते हैं, आपने देखा कि 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर हमारी गाय ने पाना छोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं लेट डाउन ऑफ मिल्क, मतलब गाय पना गई है। तो जैसे लगता है आपको कि 1 मिनट लगा है, गाय पना चुकी है, आप उसी समय 2 मिनट घड़ी देख के उसको पिला दीजिए, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, बहुत स्पीड में पीता है बछड़ा दूध, उसके बाद आप पूरी गाय को लगा लीजिए, बाद में आपको बछड़े को नहीं छोड़ना है, इससे भी आपके दूध में फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। बाद का जो दूध होता है हायर फैट, जनरली सामान्य तौर से हम ये करते हैं कि गाय जल्दी जल्दी लगाई, टाइम है नहीं है, थोड़ा सा बछड़ा छोड़ा और उसको खींच लिया, जैसे ही गाय पनाई अपन ने गाय लगाई और बाद के लिए 2 थन छोड़ दिए, सभी थनों में जो हायर फैट था, ज्यादा फैट वाला, वो हमने बछिया के लिए छोड़ रखा है, पतला वाला हमने लगा रखा है। तो इस बात का भी अगर हम ध्यान रखें तो आपका निश्चित रूप से फैट बढ़ेगा। कैल्शियम आप देखे देखें, मिनरल मिक्सचर देखे देखें, 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आपका 15 लीटर में या 16 लीटर में 1 किलो घी बनाते थे, आप 11-12 लीटर में घी बनाने लगेंगे 1 किलो, काफी फैट बढ़ जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में गौपालकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित, कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने देश की रणनीतिक सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत 30,000 नए आवास मंजूर करने का लक्ष्य। और राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई 2 अक्टूबर तक होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें 35,000 से ज्यादा गोपालक हिस्सा लेंगे। श्री शाह इस दौरान डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर गोपालकों को 101 करोड़ रूपए की राशि अनुदान राशि वितरित करेंगे। श्री शाह नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा मुक्ति अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गोपालक सम्मेलन के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया।
1: ये राज्य में पहली बार हो रहा है कि दूध उत्पादकों को बुला करके दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए भविष्य में उन्नत नस्ल के पशु और हमारे राज्य के अंदर सहकारी संघ को मजबूत करते हुए अच्छी ब्रांड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा।
0: नौसेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रणनीतिक सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि हाल में नौसेना में शामिल युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इस सम्मेलन में नौसेना की तैयारियों, रसद, रखरखाव, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। सम्मेलन में बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और एआई के बढ़ते उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वायत्त और चालक रहित प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने तकनीक को तेजी से अपनाने पर जोर देते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताएं मजबूत करने की आवश्यकता बताई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है, इसे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचा जा सकता है और डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर भारत ने वैश्विक व्यापार में असंतुलन दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों का पालन करने पर जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि ज्यादा उत्पादन अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब छिपी हुई सरकारी मदद या सब्सिडी के कारण किसी देश में उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन और सप्लाई चेन को अलग अलग देशों में फैलाना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर WTO के नियमों से बाहर जाकर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। किसानों के लिए ई पॉजन पोर्टल पर पंजीयन आज से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा और खाद्य के सत्यापन के लिए पंजीयन के दौरान 1 रूपए का ट्रांजैक्शन होगा। किसान ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे, जबकि MP ऑनलाइन और CSE से अधिकतम 50 रूपए शुल्क देकर पंजीयन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश में कल मध्य निषेध सप्ताह की शुरुआत हुई। गांधी जयंती से शुरू हुए इस अभियान में लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान नशा मुक्ति रैलियां, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी नशा न करने और दूसरों को भी इससे दूर रहने की शपथ लेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सेवा संकल्प अभियान के जरिए 17 अक्टूबर तक 30,000 नए मकान मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के नगरीय निकायों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पात्र लोगों को योजना और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। नगर परिषदों को कम से कम 50, नगर पालिकाओं को 100 और नगर निगमों को 500 मकान मंजूर करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही पहले से स्वीकृत मकानों की पहली और दूसरी किस्त समय पर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आज और कल विकासखंड स्तर और नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर दिलाया जाएगा। खासतौर पर किसान, ग्रामीण श्रमिक, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों के लंबित काम और आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। शिविरों में स्वास्थ्य जाँच के साथ अलग अलग विभागों के कम से कम 25 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश अन्नमैया जिले के मदनपल्ली में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद थे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई 10 अक्टूबर तक होने की संभावना है। अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के साथ दिन में गर्मी, जबकि रात में हल्की ठंडक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मानसून की विदाई सबसे पहले ग्वालियर चंबल और उज्जैन संभाग से शुरू होने के बाद दूसरे हिस्सों से होगी। आपको समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत हुई मतदान की मतगणना आज होगी। विकासखंड रानापुर की जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 6 के सदस्य पद और थांदला विकासखंड की ग्राम पंचायत पलास टोर की सरपंच पद के लिए 29 सितंबर को मतदान हुआ था। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल आगरमालवा जिले के बड़ौर क्षेत्र के आंगनवाड़ी पर आयोजित हुए आंगन मिलन कार्यक्रम में ग्राम दापड़िया में विधायक मधु गहलोत भी शामिल हुए। खंडवा में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 5 से 30 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम में 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। अभियान के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाई जाएगी। भोपाल शहर में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही को लेकर कल रात बड़ी संख्या में महिलाओं ने पैदल मार्च निकाला। पुराने शहर के कमला पार्क से शुरू हुआ यह मार्च गैमन इंडिया मॉल पहुंचकर समाप्त हुआ। कटनी में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिले में किसान पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। डिंडौरी जिले में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की कैच द रेन अभियान के अंतर्गत रिफॉर्म महोत्सव 2026 का आयोजन जनपद पंचायत बजाक की ग्राम पंचायत सिंहपुर में कल संपन्न हुआ। उज्जैन में सवैया सम्राट दुले सिंह सिकरवार की स्मृति में 19वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कालिदास अकादमी में किया गया। बैतूल में अस्पृश्यता निवारणार्थ जिला स्तरीय सद्भावना शिविर का आयोजन कल विकासखंड आमला के ग्राम ससुंदरा में किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत में सुनिए यशुदास की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है चित्तचोर। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन। इस गीत की फरमाइश में भेजी है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्बी और हिमाक्ष ने इसी गीत को पसंद किया है। हरगोविंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीक्षा और मैक्स ने इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा सिराज, अंजो योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास बादवानी ने इसी गीत को पसंद किया है। श्री गंगानगर से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित, खुशी गोस्वामी ने अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी और जसपाल यादव ने, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।
1: मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा की दो बार परिक्रमा की, नर्मदा की 4000 किलोमीटर की पदयात्रा के माध्यम से

0: पसंदीदा कार्यक्रम।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिप में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
5: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
4: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
5: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स, खेमलासा रोड बीना,
4: माणिक मोटर्स, छोटा करीला, सागर।
5: संपर्क करें 8720096977,
4: 8720096977।
6: करमा करम 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज,
4: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
7: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय,
4: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
8: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल उच्चतम तकनीक और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ यहां उपलब्ध है सभी प्रकार के स्त्री रोगों का इलाज, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन, डिलीवरी सुविधा, सीजर ऑपरेशन से डिलीवरी, स्तन में गठान और निसंतानता का किफायती व आधुनिक इलाज।
5: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, सागर।
9: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में। अगली फरमाइश हमें भेजी है पांडर कड़वा से, अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे ने इसी गीत को पसंद किया है। तनुवाणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीति सिंह ने, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान बापू ने इसी गीत को पसंद किया है। शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। मुंगीसरा से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अयान मंसूरी, यश मंसूरी, मुमेर मंसूरी ने, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म दूसरा आदमी से गीत, आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की, गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

लीजिए अब सुनिए अभिजीत की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम है चलते चलते। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चित्ता जसवीर जस्सी सीता और गीता ने, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर अब्दुल हक डाबर जिया उल हक डाबर मोहम्मद उमर डाबर ने, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी ने, फजलिका पंजाब से भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल लाड़ी शालिनी दिवांशी वाणी आरबी खेड़ा जीवन से बूक और समस्त खेड़ा परिवार ने। इसी गीत की फरमाइश में भेजी है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल मॉरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष नंदिनी ने, धंधा ग्राम सुर्खी कला से अमित जंघेल शकुन आरुषि ओशिका आरवी और अंजलि ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत। संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: अगली फरमाइश हमें भेजी है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रंजन रजक, बिपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके सभी परिवारजनों ने इस गीत को पसंद किया है। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा ने इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा ने इसी गीत को पसंद किया है। जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी ने इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म चांदनी से ये गीत, आवाज है लता मंगेशकर और बाबला की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया शिव हरी ने।
1: लक्ष्मण जी की लाने तो कई और सेना थी, जामवंत थे, नल नील थे, अंगद थे।

और सिंगर अभी तक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में गजल कलाम है जमीर काजमी का। संगीत दिया है भूपेंद्र सिंह ने।

0: और राष्ट्रीय स्तर पर वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य सुनिए रविवार सुबह 8:25 पर, हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बातें
1: जंगल से।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल। कलाम है निदा फाजली का, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।
3: और वर्तमान में कितनी बढ़ जाती है चूंकि इस संसार का मूल

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहित ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमरीका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्य

0: घरों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
4: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
5: मेरा नाम पूजा जाधव है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ और मैंने गुरुग्राम में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है, उससे मैंने गेहूं में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
4: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के

0: साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ेगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शैकियों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में सुनिए गोमन प्रसाद कुशवाहा के स्वर में चेतावनी गीत।
5: गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार, द हेडलाइंस।

0: Treatment and Therapy, addressing the issues of the
1: society. Diwali se pehle Diwali dhamaka.
2: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना
1: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
2: संपर्क करें 8720096 77
1: 8720096 77।
3: करमा करम 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज।
1: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
4: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय
1: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
2: बात
1: ये शर्माने की बात नहीं है, अगर आप आइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो मिलिए सर्व सुविधा संपन्न श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में, जहां आपको मिलेगी सस्ती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा जैसे लेजर और स्टेपलर।
2: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल मेन तिली रोड पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्वागत।
5: एक बार फिर आपका स्वागत है बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत में। लीजिए अब सुनिए काशीराम कुशवाहा के स्वर में ये लोकगीत।

0: इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सुनिए हेमलता और जसपाल की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है नदिया के पार। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन
1: मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का

0: कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है।
1: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
2: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट। खेती को दे नई दिशा। नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
2: 50 वर्षों से लगातार आपके सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना
1: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
2: संपर्क करें 8720096977
1: 8720096977।
3: एक जमाने से कहानी है सुना।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है चित्रपट संगीत में। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के स्वर में गीत। फिल्म का नाम है इजाजत। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है आरडी वर्मा ने।
3: पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी।

0: लीजिए अब सुनिए फिल्म नूरी से गीत आवाज है लता मंगेशकर की। गीत लिखा है जान निसार अख्तर ने, संगीत दिया है खयाम ने।
1: एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई

0: कदर से निर्भरता। लीजिए अब सुनिए फिल्म रोजा से, ये गीत आवाज है मिनमिनी की। गीत लिखा है पीके मिश्रा ने, संगीत दिया है एआर रहमान ने।
1: उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था। ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट हो गया, और आजकल तो

इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: तीसरों का गीत आप सुन रहे थे शहबाज शाह सूब खान की आवाजों में, इन टूरिस्ट के बोलते संजय लीला भंसाली की तरफ से।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच अब्दुल मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: शुरू से बाहर की टांग सी है विविध भारती की परवाज, और आज 3 अक्टूबर है विविध भारती के सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। दिन भर है कार्यक्रम, तो रहिए विविध भारती के संग और सुनते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम। और आपको बता दें कि बोहेमिया चेकोस्लोवाकिया में अप्रैल 1907 में जिन्हें वाल्टर कॉफमैन, जो एक संगीत शास्त्र संगीत शिक्षक के साथ साथ एक कंपोजर भी थे, कई देशों में गए और समय बिताया। 1935-1946 के बीच कॉफमैन भारत में रहे। फिल्म उद्योग बम्बई की एक कंपनी में संगीतकार रहे। कुछ समय बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया उन्होंने, और 1946 तक ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक बन गए। कॉफमैन ने आकाशवाणी की संकेत धुन यानी धुन बनाई, जिसमें तानपुरा वायलिन और वायोला है।

0: प्रेमरतन दिन पायो संघ गीता संगीत और साथियों की आवाजों में रिशद कामल के बोलते हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां

0: फिर भी यात्रा के साथ सजीव प्रसाद आपसे मिलूंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें, तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में। विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

खास आवाज और इनके नाजो अंदाज से सजा है आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह के जश्न के अवसर पर आप तक पहुंचेगा। रहिए विविध भारती के संग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, श्रोताओं चित्रों कार्यक्रम में फिर हाजिर होते हैं।

तीसरे श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और विविध भारती की अगर देश की अंतिम सिग्नेचर ट्यून की बात की जाए यानी संकेत धुन की बात की जाए श्रोताओं तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये धुन ब्रह्मांड के गूंजते ओंकार नाद का स्वर है। वाल्टर कॉफमैन पश्चिमी क्लासिकल संगीत में दक्ष थे। 1957 में कॉफमैन स्थायी रूप से अमेरिका चले गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन के संगीत प्रोफेसर बन गए। उन्होंने नई संगीत शैलियों की रचना की। उनकी लिखी पुस्तक रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बेशकीमती किताब मानी जाती है। आकाशवाणी के विलक्षण सिग्नेचर ट्यून की दिव्यता अद्भुत है श्रोताओं। सचमुच कुछ चंपई रंग लिए हुए ये धुन जब सुबह बिखरती है तो नूर बरसाती है।

जूलिया एमिफ्रॉन का ये गीत आप सुन रहे थे, एआर रहमान की तर्ज थी, जावेद अख्तर की ये रचना थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती से।

गीत आप सुन रहे थे श्रोताओ, यही है आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आंखों की सिलवटें कहती हैं उम्र की दहलीज पार कर आए हैं, लेकिन विविध भारती के आंगन से गीतों की वही झलकार अब भी आती है, तो दिल से यही दुआ निकलती है कि तू शाद रहे, तेरा आंगन शहनाइयों की गूंज और गीतों की मधुरता से आबाद रहे। श्रोताओ, विविध भारती के प्रसारण को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए शुरू से ही आज तक प्रयास किया जाता रहा है, और इसमें जब आपका साथ होता है तो विविध भारती एक नए मुकाम को छूती है, और आज भी विविध भारती की सालगिरह पर बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए खास पेश किए जाएंगे। तो चित्रों कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, लेकिन रहिए देश की सुरीली धड़कन

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें ये पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मान

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, एलओसी और बॉर्डर टू। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रिफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रिफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं
1: भोपाल का प्रसारण है।
2: प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख है ताहिर खान का, वाचन स्वर है दीपक सिंह के।
3: आकाशवाणी से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। राजधानी भोपाल से अब मानसून की विदाई हो रही है। ऐसे में दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को तपिश का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह और देर रात्रि में गुलाबी ठंड का एहसास भी होने लगा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार को आज नए रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के जरिए देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश हो रही है। प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की वापसी हो गई है। विगत दिनों भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें 7 शहरों में इंटरसिटी और इंट्रासिटी सेवा देंगी। सरकार ने पहले साल की बसों की संख्या 1500 और 2031 तक 15,000 करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक मनवाल ने सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को 100 दिन से लंबे शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा है। मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व और जनजातीय कार्य विभाग की लंबे शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। भोपाल में बीते दिनों बिजली के खंभे से करंट लगने से वकील और भाजपा नेता दिव्यांशु तिवारी की मौत के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट के बाद सहायक यंत्री सुमित सिंह को निलंबित कर दिया गया, जबकि कार्यपालन यंत्री आशीष श्रीवास्तव के निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वर्गीय दिव्यांशु तिवारी के निवास पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। सड़क हादसों में गंभीर चोट और मौत के मामलों को कम करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर 10 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 8 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के दौरान प्रदेश के प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय और राजमार्गों के साथ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट पर विशेष चेकिंग की जाएगी। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार चालकों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतकर मध्य प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने टीटीनगर स्टेडियम में मुलाकात की। इस दौरान श्री सारंग ने एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले स्टार खिलाड़ियों आशी चौकसी और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। दोनों खिलाड़ियों ने शूटिंग में रजत पदक जीतकर देश और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की जेलों में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के मध्य अगस्त माह में हुए समझौता ज्ञापन के तहत प्रोजेक्ट पहरी के अंतर्गत केंद्रीय जेल भोपाल में प्रदेश की प्रथम साइको सोशल केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन जेल डीजी वरुण कपूर ने किया। इस सेंटर के जरिए जेल में बंद कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की नियमित जांच, काउंसलिंग और आवश्यकता के अनुसार मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भोपाल के कोलार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों भाजपा नेताओं के साथ बहुचर्चित फिल्म हनुमानगंज देखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नीम करौली बाबा के जीवन चरित्र पर केंद्रित हनुमानगंज फिल्म हमारी आस्था, आध्यात्मिक परंपरा और भगवान हनुमान की भक्ति के मार्ग को समझने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि भक्ति से समाज सुधार की शक्ति पाने की पटकथा वाली इस फिल्म ने हम सबकी आराध्य भगवान हनुमान की आराधना और सेवा की भावना को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख था ताहिर खान का, वाचन स्वर दीपक सिंह के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
4: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब को

0: चिट्ठी से लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप सबकी बहन राम कुमारी ठाकुर की राम राम पहुंचे। भैया आप सभी जने खेती किसानी के काम में जोरों से लगे हो, कहूँ भुंटा टूट रहे हैं, कहूँ उर्दा कट रही है और कहूँ और अन्य तैयारियां लगी हैं, और एक ही संग आप उन्हें अपनी बात ही बैठे रहे तो पसंद के चिट्ठी से लोगी सुनवे की लाना। तो लो हम सबसे पहले लेके आए हैं राम बिसाल चंदेल को गा पहुंचो लोगी। एक और सुनवे हमें चिट्ठिया लिख भेजी है अमलतास अमरीन होम्स कटारा भोपाल से, योगेश्वर से भारतीय, भैरव प्रताप से भारतीय, लोकेंद्र प्रताप से, प्रेम भाई और गोपाल भारतीय ने। एक और सुनवे हमें चिट्ठिया लिख भेजी है ग्राम पोस्ट बाय तहसील रहती जिला सीहोर से, अमर से भारतीय, डॉक्टर सिखावत से भारतीय, शाश्वत से भारतीय, सचिन भारतीय, महेंद्र भारतीय, कोसाबाई भारतीय और इनकी सभी संगवारों ने। तो सुनते हैं अपन राम विशाल चंदेल को।
1: मेरा ख्याल है कि मौसम बदल रहा है।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: मालिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720096977।
2: और अब अगले लोकगीत आप सभी जनों को लेके आए हैं, रामचरण यादव को गाओ भाव। देखो भैया, जैसो अपन ने अभी पहले के चेतावनी में सुनो कि बनो बिरथा घर बारो री, जो सब छोड़ के अपन को निकल जाने हैं, तो अपने जीवन में सांसों की रहत भय हम अपने जो भी आदरणीय सम्मानीय पूजनीय देवतुल्य जो हमारे माता पिता हैं उनकी सेवा में पीछे न हटे। ऐसे ही कछु बात लोक भजन में रामचरण यादव कह रहे हैं। और एक और सुन भी हमें चिट्ठिया लिख भेजी है नेपाल पहले सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, यस, अवधेश सक्सेना, रामदास, प्रेम नारायण, पंडित रमाकांत दुबे, रमेश पटेल और सजीत भाई ने एक और सुन भी चिट्ठिया लिख भेजी है। ढकरई जैसी नगर से इंदिरा सिंह ठाकुर, जगभान सिंह ठाकुर, अमन ठाकुर और प्रमोद पटेल ने, तो सुने थे इन सभी की पसंद पे रामचरण यादव।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दे नई दिशा। नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720-0096-77
0: 8720-0096-77।
2: और अब अगले लोकगीत लेके आए हैं आप सभी जनों की पसंद पे पुरुषोत्तम नायक को गाँव भाव। एक सुन भी हमें चिट्ठिया लिख भेजी है गौर झामर से, कुंदनलाल चौरसिया निर्मोही, अंबिका प्रसाद चौरसिया, विवेक कुमार, बीरेंद्र, देवव्रत, कार्तिक, आराध्य, नैवेद्य, मनोज और मानस चौरसिया ने। एक सुन भी चिट्ठिया लिख भेजी है ग्राम मोकलपुर से, पहाड़ से, घूमन से, गोविंद साहब से, राजेंद्र, डॉक्टर पप्पू जैन और राहुल जैन ने। तो सुना था इन सभी की पसंद पे पुरुषोत्तम नायक को।

0: वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित
1: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
0: सुनिए रविवार सुबह 8:25 पर। हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
1: बाटे
2: जंगल से।
3: और अब अगले लोकगीत लेके आए हैं रामदयाल सिंह को गांव भाई को बांधकपुर से सुनबो चाहो ममता महेश नामदेव हर्ष नामदेव नंदिनी सुनीता नामदेव कीर्ति शमा नामदेव और समस्त मंडली ने म्यांमार के ढाना से भगवान दास नामदेव ग्रीस ओम गुड्डू गौरी सतीश चौरसिया दिनेश रामू शिवाय मोनू हर्ष लक्ष्य राजकुमार अर्पित नामदेव विजय नन्न भाई सेन प्रमोद सेन बिठल ठाकुर भीकम सेन और मंगललाल नामदेव ने। तो सुनते हैं सभी की पसंद पे रामदयाल सिंह को।

अभी सुनी थी अपन रामदयाल सहकिला ने। एक ही संगे कार्यक्रम चिट्ठी से लोग गीत समाप्त करवे की बेरा हो गई, मगर हम आपरों को बतावो चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में चिट्ठियां डालवे की लाने हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी से लोक गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र सागर। हमें आपके पत्रों को बेसब्री से इंतजार रहे। आप सभी जने खुश रहो, स्वस्थ रहो। इन्हें इन दुआओं शुभकामनाओं के संगे आज्ञा दो। राम राम।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को आप सबकी अपनी बहन राम कुमारी ठाकुर की प्रेम भरी राम राम पहुंचे। बहनों आप सभी जने साप्ताहिक कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी को बड़ी बेसब्री से इंतजार करत हो कि हमारी सखिये आए और हमारे संगे कछु बातें कछु जानकारियां कछु हिदायतें साझा करें हमारे संगे। तो बहनों आज के कार्यक्रम में अपन चर्चा कर रहे वन्य जीव सप्ताह पे संगई अस्पृश्यता सप्ताह पे और एक ही संगे हमारी बहनों को काम काज के संगे स्वयं को भी ध्यान रखो चाहिए ये पे अपन चर्चा करें। तो बहनों देखो बिगड़त भय प्रकृति की संतुलन पर्यावरणीय असंतुलन को ध्यान में रखत भय सभी जनों को धरती पे उपस्थित पहलुओं चीजों के संरक्षण की वर्तमान आवश्यकता है। वनस्पतियां पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु वन्य जीव वन जल स्रोत आदि सभी के संरक्षण की बहनों जरूरत है और हमें सबको इसमें सहभागिता निभाव चाहिए। अगर आपको पर्यावरण को संतुलित में रख के स्वयं को स्वस्थ रखने हैं तो आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ सुरक्षित पर्यावरण देने हैं तो वर्तमान समस्याओं को देखत भय समस्याएं आप सभी जने देख रहे हो देखत भय दिन दिवस सप्ताह मनावे की बहनों जरूरत पड़ रही है। कैसे हमारे ये तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं हम सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं पे ध्यान दे रहे हैं एक आगामी दूरगामी परिणाम का हुए उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इन्हीं के उद्देश्यों को आप सभी जनों को इनके प्रति जागरूक करवो है कि प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु नदियां पहाड़ जलाशय अपने जीवन में जरूरी है और अपने जीवन के अभिन्न अंग है इनसे हम आपको अलग नहीं हो सके इनको अपने से अलग नहीं करो जा सके इनको रहबो धरातल पे आवश्यक है। ये उद्देश्य को लेके 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। तो अपन को वन्य जीवों को सुरक्षित रखने हैं इनके घर जहां जी रहते हैं यानी वन जंगलों को भी अपन को संरक्षित करने हैं उनकी कटाई को रोकने हैं उते अपन को वृक्षारोपण करने हैं वनस्पतियों को भी नहीं काटें वनों में आग नहीं लगाएं वन्य जीवों के शिकार पे भी रोक लगाएं। इतर पे सरकार भी पूर्ण प्रयास कर रही है बड़ी बड़ी पार्क अभयारण्यों की स्थापना हो रही है। बहनों अपन को हर प्रकार से सुरक्षा के लाने इनकी सुरक्षा संरक्षण जरूरी है। कैवी को मतलब जो है हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने हैं पर्यावरण को संरक्षण करने हैं तो हमें इन सब को भी संरक्षण करवो जरूरी है। तो हम सभी जने वन्य जीव सप्ताह पे संकल्प लेवे कि हम इनके संरक्षण के लाने सहभागिता निभे। तो बहनों जातो चर्चा थी वन्य जीव सप्ताह की और अब क्रम है मनोरंजन को। तो सुनते अपन सुशीला देवी अहिरवार को गाओ भजो लोकगीत।

चलो इनको सबई कछु लौ जे है। और बहनों अगलो क्रम है चर्चा को अस्पर्श्यता यानी छुआछूत। तो देखो बहनों अस्पर्श्यता को अर्थ है छूबो या छुआछूत मानबो। जब बहनों देखो एक सामाजिक कुरीति कुप्रथा है जिको कौन व्यक्ति या समूह हो उनकी जाति के आधार पर उनके संगे भेदभाव या उनको छूबो अच्छो नहीं मानो जावे, उनके संगे छुआछूत को व्यवहार करो जाते। तो बहनों ऐसो न भाव चाहिए, सबको समान मानो चाहिए। कोनो भी प्रकार से जाति के आधार पे भेदभाव छुआछूत न करो चाहिए, उनको सभी कार्यक्रमों आयोजनों में शामिल करो चाहिए। अपने देश में आधिकारिक तौर पे छुआछूत को अंत 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होवे के संगे संविधान के अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से अंते को करो गो है। कौनों के संगे ये प्रकार को व्यवहार करबो या छुआछूत मानबो कानून के अनुसार भी बहनों दंडनीय अपराध है। वैसे भी बहनों छुआछूत नहीं मानो चाहिए, एक दूसरे के संगे परस्पर व्यवहार रखो चाहिए, समानता के संगे सबको एक दूसरे के संगे मिलजुल के आयोजनों को हिस्सा बनो चाहिए और सबको बराबर सम्मान भी दो चाहिए और सब सम्मान के हकदार हैं। इस बहनों ए सामाजिक कुरीति को हम सभी जनों को मिलके बहिष्कार करो चाहिए। बहिष्कार करत भय अपन को सबके संगे समानता प्रेम को व्यवहार करो चाहिए। तो बहनों जातो हती चर्चा अस्पष्टता की और अब फिर बारी है मनोरंजन की। तो सुनत है अपन रेखा सिंह परमार को।

उम्दा बात इनने लोकगीत के माध्यम से अपन सभी जनों को बताई। और बहनों, अब जो आगामी चर्चा है वह आप ही से जुड़ी भई है। आपके लाने बहुत ही ज्यादा

साफ सफाई के कामकाज में लग जाती हैं। कैसे बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बाखरें, बड़े बड़े आंगन और ढेर सारे काम, तो बहनें अपने हिसाब से इन चीजों की योजना बनाने लगते हैं और काम करने लगते हैं। ऐसे ही बहनों किसानों में खरीफ की फसलों की कटाई, घाई, उनकी साफ सफाई और एक संग बहनों रवि की तैयारी, खेतों की तैयारी, खाद बीज की व्यवस्था, सबई कछु कोनो काम आप औरों के बिना सहयोग के होत नहीं है। अगर किसानी की बात करें तो किसानी के काम का बहनों के सहयोग के बिना हो वो संभव है नहीं है। सुबहनों कहबो और बतावो हम जो चाह रहे हैं कि अपन को सभी जिम्मेदारियों के संग एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं के स्वास्थ्य की भी निभाने हैं। कैसे? अगर आप स्वस्थ न रहो, आप तंदुरुस्त न रहो, आप खुश न रहो, तो घर गृहस्थी के कामों से लेके खेती किसानी के तक काम जो है वो प्रभावित हो जाए। तो शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त निरोग रहे तो सभी काम समय से और अच्छे से आप कर पाओ। समय पे खान पियन से लेके खान पियन लेवे से शरीर कमजोर होवे के संगे थकान महसूस करन लगते। अगर अपन उन्हें समय पे भोजन नहीं करें, कैसे हमारी बहनों की अक्सर आदत रहते अब जो और कर लें फिर खा लें, अब जो और कर लें फिर खा लें, ऐसे में समय निकल जाते और शरीर में जो भोजन की मांग रहते वह समय पे नहीं होवे से शरीर जो है कमजोर हो जाते। तो बहनों अपन को ऐसो नहीं करने हैं। एक ही बात फिर थकान महसूस होने लगते और हो सकते है आपको चक्कर भी आ जाए। तो जो 5 मिनट को समय अपन को खावे पे देने हैं वो अपन को सब काम छोड़ के दे देने हैं और ऐसे आपको अगलो काम भी बहुत अच्छे से हुई है। तो देखो बहनों लगातार कमजोरी और थकान महसूस हो वो आमतौर पे खराब जीवन शैली, पोषण की कमी या फिर कोनो अंदरूनी मेडिकल समस्या को संकेत हो सकत है। तो एक हो भी अपन को अनदेखो नहीं करने, अगर कोनो ऐसी बात है तो तुरंत सब काम छोड़ के हमें अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लेने हैं और उस समस्या को निदान भी करने हैं। और इस समस्या को कारण पोषण की कमी, नींद पूरी नहीं होबो, जो इन समस्याएं हमारे शरीर में हो रही है इनको कारण बहनों हम आपको बता रहे हैं कि पोषण की कमी, पोषण यानी खान पीन में कमी रख रहे हो आप, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, संगई कोनो मानसिक तनाव भी हो सकते है। तो इन सभी चीजों से अपन को दूर रहने हैं, इसे अपन को पोषण सही और संतुलित मात्रा में लो चाहिए। अपनी भोजन की थाली में अक्सर देखो जाते है कि हमारी बहनें जब हमारे भैयाओं को, घर के अन्य सदस्यों को भोजन परोसती हैं तो मैं ढेर सारी चीजें रखती हैं, ध्यान कर कर के रखती हैं और जब खुद थाली लेती हैं तो रोटी सब्जी लेके खावे बैठ जाती हैं। तो ऐसा अपन को बहनों नहीं करना है, अपन को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखवे के लाने, सभी की निरंतर सेवा करवे के लाने अपने शरीर को स्वस्थ रखबो जरूरी है। तो ऐसे अपनी भोजन की थाली में दाल, सब्जी, रोटी, पापड़, चटनी, फल, दूध, दूध से बनी हुई चीजें, सभी चीजें शामिल करो चाहिए। और ज्यादा थकान होवे पे तुरंत ऊर्जा पहुंचावे के लाने, अब बहनों देखो सभी कछुओपन कर रहे हैं, खान पीन भी कर रहे हैं और घर में अगर ज्यादा काम है और आपको ज्यादा थकान महसूस हो रही है तो तुरंत ऊर्जा पहुंचावे वाले कछु ऐसे खाद्य हैं जिनको उपयोग करके अपन तुरंत ताकत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहनों केला है, अगर घर में केला उपलब्ध है, आपको थकान महसूस हो रही है, तुरंत केला खाएं। इसमें क्या रहते बहनों, इसमें प्राकृतिक शुगर और पोटेशियम होते जो उनके थकान को कम करके तुरंत ताकत देते। आप बहनों जरूर इस्तेमाल करके देखें। और संगे चना गुड़, खाली पेट भुंजी भाई चना के संगे गुड़ खावे से बहनों शरीर की कमजोरी दूर होते। खजूर या किशमिश, इन दोइयों में से आपके घर में जो कछु उपलब्ध हो आप एको सेवन कर सकते हो। इसमें आय

आयरन प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होते जोन के सुस्ती को दूर करके अपन को स्वस्थ रखते। तो बहनों पोषण के संगे अपन को इन सभी चीजों को भी ध्यान रखबो बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को सेवन करके स्वयं को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने हैं ताकि घर गृहस्थी और किसानी के कामों में आप पूरी तौर पे सहयोग कर सको। हमें विश्वास है कि हमारी बहनें हमारी हिदायत को जरूर ध्यान रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, घर परिवार और खेती किसानी के कामों में सहभागिता करें। और बहनों अब फिर बारी है मनोरंजन की, तो सुनते हैं अपन शकुंतला देवी को।

0: और बहनों जब आप सभी जने स्वस्थ तंदुरुस्त रहो तो तभी शेयर करवो अच्छो लगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी जने खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। इन्हीं दुआओं शुभकामनाओं के संगे अपनी बहन राम कुमारी को कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी से आगे तो राम राम।
1: पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी, यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। मैटिनी शो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हां, आज का दिन है जश्न का। जश्न उस आवाज का जो बरसों से हमारे घरों में गूंजती रही है। जश्न उस साथी का जिसने हमारी खुशियों में हमें मुस्कुराना सिखाया, हमारी तन्हाइयों में हमारा साथ दिया और हमारी जिंदगी के हर रंग को संगीत से सजाया। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। हम सभी वीवीएस के स्थापना दिवस के 70वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। उस विविध भारती की सालगिरह जो सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं था आपके लिए, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की जिंदगी का हिस्सा है, उनकी यादों का हिस्सा है, उनकी जिंदगी का जीवन संगीत है ये विविध भारती। तो आज दोस्तों हम और आप मिलकर मना रहे हैं विविध भारती के इस खूबसूरत सफर का जश्न। और इस जश्न में हमारे लिए एक बेहद खास तोहफा है, एक ऐसी आवाज जो अपनी पहचान के साथ साथ बरसों से श्रोताओं के दिलों में राज कर रही है, श्रोताओं के दिलों में बसी हुई है। हमारे साथ है जानी मानी गायिका, अभिनेत्री और लेखिका इला अरुण। इला जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार। और आप सभी को विविध भारती के जितने भी अनाउंसर्स हैं, स्टेशन डायरेक्टर और श्रोता
0: जी,
1: 70 साल की ये जो वर्षगांठ आप इतने जोश से मना रहे हैं
0: जी,
1: मतलब इतनी सजी धजी इतनी महिलाएं, तो मुझे लगा दिवाली है और मेरे लिए यादों का दरिया बह गया
0: जी।
1: क्योंकि विविध भारती का जब आपने कहा 70 साल मना रहे हैं, तो हमारी और विविध भारती की उम्र तकरीबन आसपास ही है और बहुत यादें हैं। और आपने विविध भारती में मुझे मेरी जवानी के दिन भी याद दिलाए, फौजियों से प्यार करना भी सिखाया, किसानों से बात करनी भी सिखाई, और विविधता जो भारत की एक धरोहर है उसके सारे रंग आपकी विविध भारती में मुझे मिले, तो बहुत मुबारक।
0: तो आप समझ आए, आपने कहा कि फौजियों से प्यार करना सिखाया, तो आपका इशारा कहाँ था? कहीं ना कहीं प्यार आपको भी हुआ किसी से?
1: कहीं ना कहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की, मुझे कई बार हुआ और जो जवानी के दिन थे ना
0: जी,
1: उसके प्यार का तो सारा मतलब जिम्मेदारी विविध भारती की है। गाने ऐसे थे
0: जी,
1: बिल्कुल प्यार जिससे हो रहा है उसकी शक्ल दिमाग में, मतलब विविध भारती देखिए, टीवी तो था नहीं
0: जी, बिल्कुल।
1: तो उस समय की बात कर रही हूँ कि वो जो मोहब्बत थी ना, इतनी पाक साफ
0: जी,
1: और आप अपना दिल लुटा देते थे। ऐसे कई गाने जो मैं चाहूंगी कि आप बजाएं, अगर वो लोग जिंदा हैं तो याद करेंगे, नहीं है तो उनकी याद में मैं गाने पेश करूंगी।
0: बिल्कुल, तो हम एक कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद श्रोता समझ जाएंगे कि आज हम क्या क्या बातें आपसे करने वाले।
1: जी जी, आपका जो मन में है
0: जी।

0: तो देखिए यहाँ बैठी सभी महिलाओं की चूड़ियाँ भी खनक गई हैं आपके इस गीत से।
1: मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गाना मेरी जिंदगी का, मतलब मैं क्या कहूँ, एक ऐतिहासिक गाना है
0: जी।
1: जब पहली बार मुझे भारत की कोकिला लता जी के साथ लाइव,
0: बिल्कुल,
1: देखिए उस जमाने में ये था कि ऐसा नहीं था कि 100 साजन तैयार के पहले बजा के चले गए। आज तो सब कुछ वैसे भी कीबोर्ड पे हो रहा है
0: जी,
1: पर तब इतने म्यूजिशियंस और ये लाइव, एक तरफ लता जी और एक तरफ मैं, और जिसने कभी कुछ ज्यादा गाया ना हो, सीखा ना हो। और मैं शिव जी को भी याद करती हूँ, पंडित शिव जी को भी, और अपने हरि प्रसाद चौरसिया जी को भी याद करती हूँ, और सबसे पहले यश जी को और श्रीदेवी जी को और सरोज खान जी को। देखिए मेरी ये बड़ा इमोशनल मामला है, इनमें से आधे लोग रहे नहीं है, पर गाना कैसे बनता है, कैसे पकता है। और इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब सरोज जी ने देखा कि मैं डांस भी कर रही थी, सर्दी का मौसम था और दोहरों पे, मतलब रेगिस्तान के टीलों पे, तो उन्होंने कहा ये तो ज्यादती है कि गाना इन्होंने गाया है और ज्यादा हिस्सा श्रीदेवी जी के पास है
0: जी।
1: तो उन्होंने एक लता जी की लाइन पे मुझे डांस करवा दिया। अब मुश्किल ये थी कि इसको डब करना था, तो कैसे ये गाना बाद में हरि जी ने, और उनका सुर बहुत हाई है
0: जी,
1: और मेरा ऑक्टेव नीचे है, कैसे ये हुआ, वो है सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी
0: जी।
1: और ऐसे गाना बनता है जो कि टीम वर्क है। तो आज मैं समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों की याद बहुत आएगी जो मेरे गुलशन में दो पल को चहक
0: गए। क्या बात है, क्या बात है। तो लता जी के साथ बिताए पल के बारे में आप बताना भी चाहती थी, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा मैं जरूर बताना चाहूंगी, तो बताइए ना कि इस गाने को गाते वक्त लता जी के साथ क्या माहौल रहा आपका।
1: पहले तो मैं ऐसे कांप रही थी, मैं क्या बताऊं आपको कि जिनको जिंदगी भर आपने, आपके लिए तो मतलब ऐसा है कि
0: भगवान
1: उनके दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, और वो सादगी का एक ऐसा सरस्वती रूप, तो वो आई और शिव जी हरि जी ने मुझे कंफर्टेबल कर दिया क्योंकि मैं जानती थी। अब जब मैंने उनका सुना तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, वैसे भी थी नहीं और भी गड्ढे में गई
0: जी।
1: फिर जब रिकॉर्डिंग करने गए तो बाद में उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपके गुरु जी कौन है। बस इस बात से मैं मतलब सोच रही थी या तो गुरु जी की मार पड़ेगी गुरु जी को, और या फिर ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है क्योंकि मैंने सीखा नहीं था कहीं।

0: के साथ गाने में बहुत अच्छा लगा। मैं जो कुछ मैंने सीखा मजदूरों से बंजारों से सुन सुन के, मेरा कान में आवाज करता नहीं
1: तो, अरे आपकी आवाज में पूरी राजस्थान की मिट्टी है।
0: तो लता जी के साथ दो गाने हो गए, ये भी था रहना बावरी भाई, अनु मलिक जी मैंने सुना आपके साथ आने वाले
1: हैं, आने वाले हैं
0: तो उनके साथ जाल फिल्म का एक गाना था वो भी मैंने लता जी के साथ गाया था। पर ये सिर्फ एक बहुत ही इमोशनल यादगार है, बहुत सुरीली गायिकाओं को भी मौका नहीं मिलता है कि लता जी के साथ गाएं, और मुझे मौका मिला इसके लिए मैं यश जी की और हरि जी और अपने शिव जी की बहुत बहुत मैं उनके आभारी हूँ, शुक्रगुजार।
1: और हम भी ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपसे हमें आज मिला दिया, हम उनके आपकी आंखों से या आपके मन से उन तक पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ा पल है हमारे लिए, विविध भारती के लिए, सभी विविध भारती के परिवार के सदस्यों के लिए कि आज इला जी दोस्तों हमारे स्टूडियो में पधारी है, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिता रही है। तो इला जी आप गायिका है जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभिनेत्री है और आप लेखक है, आपकी अभी भी एक किताब आई पर्दे के पीछे।
0: जी जी
1: है ना,
0: इसलिए लोग देख तो नहीं सकते हैं।
1: हाँ,
0: पर मेरी किताब ये है
1: क्या
0: पर्दे के पीछे,
1: बहुत सुंदर पर्दे के पीछे, और आप भी कितनी खूबसूरत लग रही है पर्दे के पीछे देखिए। तो इसमें आपने अपने जीवन को खोल कर रख दिया है
0: जी,
1: क्या कहना चाहती है आप, मतलब ये आपका आत्म कथात्मक एक
0: जिंदगी है। क्या हुआ देखिए, गाना मैंने गाया था तो लोग बात जो होते हैं ना कलाकार को कलाकार नहीं समझते हैं, और गायन को भी, क्योंकि फिल्मों में सिचुएशंस होती है। ये गाना मैंने गाया था, मैं तो कह सकती हूँ चोली के पीछे, तो उससे लोगों ने मतलब उसको जैसे ऐसे मान लिया जैसे कोई बहुत बुरा गाना गाया हो, जबकि इसमें लड़की की तो कोई बुराई नहीं है, ये लड़के हरकतें करते हैं जो ऐसी बातें पूछते हैं, बट एनीवे वो मेरा एक मेरे लिए झंडा हो गया कि मतलब ये तो यही गाना गाती हूँ। तो मेरी जिंदगी पर्दे के पीछे, मैंने रंगमंच किया अपने बचपन से, जिसके आगे आपको याद हो बचपन में मखमल का पर्दा हुआ करता था
1: जी बिल्कुल,
0: फिर छोटा स्क्रीन फिर बड़ा स्क्रीन, तो पर्दे, और फिर जहाँ राजस्थान से हूँ वहाँ लाज का भी पर्दा है,
1: वहाँ
0: घूंघट का भी पर्दा है। तो पर्दे के पीछे जो मेरी ये ऑटोबायोग्राफी है उसमें ना केवल मैं हूँ वो भी तमाम औरतें हैं जो मेरी इर्द गिर्द मुझे मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा देती रही। इसमें बहुत कहानियां हैं और खास तौर से औरतों, क्योंकि औरत की नब्ज को मैं समझती हूँ, उसके दर्द को समझती हूँ, उसकी अंदर के जोश को मैं अपने गानों में सेलिब्रेट करती हूँ, पर उसके दर्द को मैं अपने नाटकों में निकालती हूँ। तो पर्दे के पीछे मैं एक माँ भी है, एक जवान लड़की भी है, उसकी मोहब्बतों का भी, स्कूल की शैतानियों का भी जिक्र है, फिर एक नानी का भी जिक्र है, बहुत सारी चीजें, एक मदर भी हूँ। तो औरत तो बहुत दौर से गुजरती है,
1: और आपने औरतों पर बहुत काम किया, इस पर भी हम आपसे एक सवाल करेंगे, लेकिन क्या पर्दे के पीछे ये जो किताब आपने लिखी है इसे लिखना अपनी जिंदगी को दोबारा जीने जैसा था आपके लिए, कि कलम हाथ में लेने की जरूरत आपको कब महसूस हुई?
0: देखिए वैसे तो मैं काफी लिखती रही, लोगों को पता नहीं है, कभी कभी कविताएं लिखती थी, कभी मैं नाटकों का अनुवाद मैंने बहुत किया है, नाटक लिखे
1: जी, जी।
0: पर जहां तक पर्दे के पीछे के लिए मुझे जो पब्लिशर थे वो पीछे पड़े थे, आप तो जानते हैं आजकल वो स्टार्स हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, पर मुझे तो ऐसा था कि कलम जैसे हाथ में आई ना तो मेरे लिए एक संवेदनात्मक जर्नी हो गई, बचपन को पुनः जीना,
1: बिल्कुल
0: अपने आप में एक हिंडोला जैसे कहते हैं, झूले पर गए और झूले से वापस आप आए, तो उस दौर से दोबारा गुजरना मेरे लिए एक उपलब्धि थी। भावनाओं को मैं ऐसे समेट पाऊंगी, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, तो मैंने एक जगह किसी और का ही था कि जिंदगी गुजर गई है किरदार निभाते निभाते मैं कौन हूँ, ये सवाल आज भी है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने इस किताब में उन महिलाओं का भी जिक्र किया है जो आपके अनुभव में रही, आपके साथ रही,
0: बिल्कुल जो मेरे साथ काम करती थी, जैसे पूरी की एक अधूरी कहानी, पूरी उसका नाम था, पर उसकी जिंदगी में वो जिस जाति से आती थी, बंजार थी, उसका क्या था, उसके पीछे क्या कहानियां थी, या फिर मेरी दोस्त मानू ने सुसाइड क्यों किया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे मैंने अभी नाटक किया है, पर तब औरतों को आधा हिंदुस्तान नहीं समझता है कि जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके लिए एक जीवन को पुनः पाना है और जीना है, उसमें हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें, मानो का मरना या पुष्पलता का कैसे भगने लगी, सब ये किरदार मेरी मस्तिष्क में समाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो है मेरी माँ, जो जिनका एक चीज है मेरी किताब में लिखी हुई है, आवेश में कभी विवेक मत खोना। ये क्लैपर बोर्ड था, यानी आवेश तो जवान होंगे तो आएगा ही आएगा।

0: पर जब भी ऐसी बात आती थी तो क्लैपर वो गिर जाता था आवेश में कभी विवेक. सो मदर उनकी लोकोक्तियां बहुत कुछ है. मतलब मैं सोचूं पढ़ना चाहिए लोगों को, मेरे लिए नहीं पढ़ना चाहिए, औरत को समझने
1: के लिए पढ़ना चाहिए. हमारे जो श्रोता इस वक्त आपसे आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे
0: हैं,
1: सामने जो खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, उन सबसे हम अनुरोध करते हैं कि और मैं भी ये किताब जरूर पढ़ूंगी और इसका इसके बारे में आपसे विचार विमर्श भी करूंगी. इस किताब को पढ़ने के बाद क्या महसूस हुआ? अब एक गाना जो आप सुनना चाहती थी, आपने कहा कि मैं पुराने दौर में लौटना चाहती हूँ क्योंकि विविध भारती में लोग पुराने गानों को पसंद करते हैं, तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा दें फिल्म ताजमहल से.
0: अरे बिल्कुल, ये तो मेरा पहला रोमांस था. करिए करिए
1: जी, सुनते हैं.

0: बताइए
1: तो ऐसा हुआ
0: जी
1: कि देखिए उस जमाने में आप तो कह नहीं सकते थे ना माँ बाप से कि हमें कुछ हो रहा है। तो गर्मियों की छुट्टियों में
0: जी
1: एक हमारे दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदार भी ना कहें कम्युनिटी के कुछ, तो बड़े हैंडसम से थे, सफेद चिकन का कुर्ता पजामा पहन के आए और बहुत अच्छा गाते थे
0: जी, जी।
1: और मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए गाया हो।
0: अच्छा
1: अच्छा जो कुछ भी था उसके बाद सारी दोस्ती विविध भारती ने निभाई, यानी कि जब कोई खतो खिताबत ना हो सके और ये गाना आपकी भावनाओं को मतलब कहीं ना कहीं आपको सहारा दे
0: जी,
1: तो क्या था उसी वक्त आप चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं और आपके आंसू टपक रहे और आप चाहते हैं टपके ताकि अगले वाले को पता पड़े कि हम कितने रो रहे हैं। पर ये गाना वाकई में मुझे पता नहीं भगवान वो जिंदा हो जा रही है पर वो एक वो जो जवानी में जो म्यूजिक जो काम करता था वो विविध भारती
0: जी,
1: क्योंकि आकाशवाणी में तो क्लासिकल और ये सब कुछ चलते थे, तो आप लोगों का बहुत सहयोग है कि आपने हमें उस आयु को जीने का एक मौका दिया और हमारी भावनाओं को समझा। हर गाना लगता था जैसे आप हमारे लिए बजा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा इला जी, हमारे श्रोता भी लगातार सुबह से लेकर रात विविध भारती सुनते हैं और इस वक्त भी आपको देख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इला अरुण जी का हार्दिक स्वागत है, साथ ही विविध भारती परिवार के साथ विविध भारती के स्थापना दिवस की भी हम हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष बधाई दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इला जी भी ओल्ड इज गोल्ड है, जी हजारों साल हम श्रोताओं की लख लख दुआएं हैं इला जी के नाम भी और विविध भारती को भी।
1: धन्यवाद।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि इला अरुण जी इज ऑफ माई फेवरेट गायिका, बेस्ट ऑफ इंडिया रेडियो चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां पर आज इला जी पधारी है और इला मैडम का हम स्वागत करते हैं। और लिख रहे हैं कि आज मंदाकिनी जी और इला जी को विविध भारती के स्टूडियो में साथ देखकर बहुत ही आनंद की जो हमें प्राप्ति हो रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है।
1: मुझे भी आनंद आ रहा है आपको देख के। आप तो मुझे साधना किया दिला दी, साधना कट
0: अरे
1: और 70s में जो आप लोग तैयार हुए ना वो कमाल है। किसी ने दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ने पोलका डॉट पहना है, किसी ने सीक्वेंस पहना है, किसी ने सब चमकीले बढ़िया भड़कीले लग रहे हैं और पुरानी तारीखों की याद दिला रहे हैं
0: जी। और ये सब आपके लिए है, हम सब आपके लिए तैयार हुए और विविध भारती
1: हमारा काम है। ये काम ये महिलाओं का काम क्या है, हर उत्सव को मनाना
0: जी। तो इला जी आज हम उत्सव मना रहे हैं विविध जयंती के स्थापना दिवस के रूप में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके गले में जो राजस्थान की मिट्टी है, आपके गाए गीतों में जो आपकी आवाज में एक अलग ही धमाल है, जैसे कि रेशम का हा, ये जो आप करती हैं, ये है क्या हुनर, एक ठसक, एक देसी अंदाज, ये क्या है, मतलब आपने इस अंदाज को कैसे बनाए, कुदरती था आपके अंदर या आपने इस अदा को कहीं से संवारा, क्योंकि हमारे श्रोता आपकी इस अदा के कायल हैं और हम भी कायल हैं।
1: मैं इसमें राजस्थान की शुक्रगुजार हूँ, वो जो बेझिझक बना है, जो मैं जो उनका फड़त का लहंगा और उनके चूड़े और उनके उनकी आवाजें और उनका निसंकोच होकर के गाना, ये शायद कहीं कानों में पड़ता रहा। हमारी माँ तो हमेशा ये कहती थी तुम हर वक्त मत गाया करो, अगर उनका बस चलता तो मैं आज यहाँ होती नहीं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक एप्रिसिएशन की एक कान दिए थे और कहीं ना कहीं मैं उनको जैसे गेहूं वाली हूँ, जैसे कोई भी वहाँ भीख जो है वो मांगता नहीं है, वो भी कलाकार ही होते
0: हैं
1: और उनमें हमें क्या फर्क है, हम परफॉर्मेंस करते हैं पैसे लेते हैं, वो उनके पास स्टेज नहीं, तो वो सड़क पे आते हैं गाते हैं, उनकी जो धुनें हैं उनकी जो मस्ती है वो कहीं ना कहीं मैं राजस्थान के को इस मामले में मानती हूँ कि राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है
0: जी, जी।
1: और ये खराश या जो कुछ भी है मुझे ईश्वर ने अगर गला ऐसा दिया होगा, जो कि मम्मी कहती थी कि क्या तुम्हारी भारी आवाज है, बस
0: यही आवाज आपके लिए वरदान बन गई
1: जी। जो कई कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने उसे प्यार किया या उस समय जिस समय पतली आवाजें हर जगह थी या पार्श्व गायिकाएं या प्लेबैक सिंगर पतली आवाज उस समय कभी भी ऐसा नहीं था कि मोटी आवाजें हैं। तो फिर हमारी रेशमा जी तो मुझे रोल मॉडल रही, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। फर्क इतना है कि वो सब एक गायक घरानों से थी, उनके कहीं ना कहीं उनके खानदानी सारंगी और सब था, मैंने एक्वायर किया है, मैंने उन लोगों को अपना एक जिसको कहते हैं मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं, और मैंने उनसे कहीं ना कहीं फेस्टिवल से उनके अंदाज से कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। और फेस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने चाहे पूरा भारतवर्ष देख लीजिए, राजस्थान में कोई भी फेस्टिवल बिना संगीत के अधूरा है, और अगर आप फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, आज मैं कह सकती हूँ कि मैं न केवल राजस्थानी बल्कि शादी जिनके घरों में होती है उनकी मैं एक महानायिका रह चुकी हूँ। अगर 5 फंक्शन होते हैं एक हिलार उनका जरूर होता था, तो वो हमेशा था कि वो ट्रेडिशनल, लोग चाहते थे कि कुछ ट्रेडिशन आए, तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए, और ट्रेडिशन ही है जो आज दोबारा फैशन में आ गई है।
0: और ये हमारी हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, कहीं नहीं जा सकती,
1: कहीं नहीं जाएगी।
0: और आपने कहा कि हर फेस्टिवल में आपका एक गाना जरूर होता है, एक गाना जो अब हम लेकर आए हैं आप ही की पसंद का, उसको सुनकर भी हमारे श्रोता जो है झूम उठेंगे। और मुझे लगता है खासतौर से महिलाएं आपके गानों को सुन सुनकर अपने घाघरे के जो स्टाइल

कोई पैसा वाला, कोई मोटा लाला, कोई संतरी जी, कोई मंत्री जी, कोई या बोले, कोई वाह बोले, मैंने उठे ले गया, मैंने बटे ले गया, मैंने रुपया खिलायो, मैंने बड़ा गम खायो।

सुन बाट हाथी में उड़ा दे बात यही तो तपा देने तो होगी पिटाई।

0: वाह वाह, क्या घाघरा घुमाया आपने।
1: देखिए ऐसा है कि ये इसके पीछे की जो कहानी है ना वो गजब की है।
0: जी,
1: एक छोटी सी कहानी। एक लड़की है, वो गांव में खड़ी है और खीरा खा रही ककड़ी।
0: जी,
1: उतर मिनिस्टर का लड़का था।
0: हाँ।
1: और वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है।

0: उसको लकड़ी मार देती है। वो कहता है कि देखो भाई मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ, तुम नहीं जानती हो। वो कहते होगी। बात यहाँ से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो लड़की स्वाभिमानी है, वो कहती है ये मेरा वस्त्र नहीं है, ये मेरा शस्त्र है। अगर मैंने 20 मीटर का घाघरा घुमाया तो जैसे कि रेगिस्तान में आंधी आती तुम सब उड़ जाओगे। उसके बाद प्रेस आती है, उसके बाद पूरी जर्नी है। उसके बाद कोई आया मोटा लाला, प्रेस लाला, सीटी सरसर बजाती, पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा उतारा, हथकड़िया पहनाई, थानेदार के आगे फिर मैं मुस्कुराने दिए धचको, उन्हें खाए लचको, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढी हुई, हमारी कमर को मैंने जरा सी लचकाई। तो अपना जो उसका स्वाभिमान है, दूसरा जानते आदमी को कहां में गिरा सकती है और कैसे कर सकती है। और एम में फूलन देवी की तरह से होता है, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बना। सो दिस इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज अबाउट वुमेन। औरत को कमजोर मत समझना। तो ये गाना उस पे था, इसके रिदम अच्छे। ये पहली बार राजस्थानी में रैप,
1: या सबसे बड़ी बात,
0: नहीं लड़की में ऐसी नहीं, लड़की में वैसी, हमारे सामने तू क्यों अकड़ी, क्यों तू क्यों झगड़ी, ये सारा कुछ जो है 7.5 मिनट का रैप मैंने लिखा है।
1: ये राजस्थान का पहला रैप,
0: पहला रैप है।
1: इलाजी की आवाज में है। श्रोताओं, आप इस वक्त इलाजी से रूबरू हैं और हम आप सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि अपने संदेश हम तक पहुंचाएं। इलाजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कम शब्दों में अपनी बात रखें, इलाजी से हम जरूर वो सवाल पूछेंगे और वो उसका उत्तर देंगे। तो चूंकि बात चल रही थी आपके लोकगीतों की, अभी इन दिनों एक बहुत खूबसूरत लोकगीत आपका बहुत चर्चा में है, चरखा
0: जी,
1: इसका जिक्र आप भी करना चाहती थी। तो ये गीत जो चरखा है, अगर सोशल मीडिया में जाए तो लाखों फॉलोवर इसको,
0: 1 करोड़ हो चुका है,
1: 1 करोड़ हो चुका है,
0: 10 मिलियन।
1: क्या है इस चरखा लोकगीत में जो आपके दिल के इतना करीब है? और आपने मुझे कई बार कहा कि चरखा लोकगीत पर हम जरूर बात करने वाले हैं और अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं सारी स्त्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, खुल के सामने आई, चाहे वो पुलिस की हो। आप शॉक्ड हो जाएंगे, शायद इंदौर था या बंगलोर था, वो सिक्योरिटी की लेडी थी और अपने ड्रेस में थी, उनको अलाउड नहीं था कि वो सेलिब्रिटी से बात करें। उसने कहा मैडम आप मेरी रील देखिए, मैं जब घर जाती हूँ तो मैं नारी हो जाती हूँ। ये चरखा है वैसे 400 साल पुराना है, इसे आदिवासियों ने बिगाया, पर जब मेरे सन इन लॉ ध्रुव घानी करने इसको, क्योंकि देखिए लोक संगीत को अगर जिंदा रखना है तो उसको हमें एक नया पैकेज लाना पड़ेगा, वरना वो क्या होगा, चौपाल जैसे हम करते थे। ये तो किसानों का नहीं, जो ताकत लोक संगीत में, हर म्यूजिक डायरेक्टर लोक संगीत को ही चुरा रहा है क्योंकि वो धुनी है, वो आवाज। तो ये जो चरखा मैंने जब दोबारा गाया तब यंगर जनरेशन को समझ में आया कि लोक संगीत क्या है। मैं तो चरखे से वैसे भी, चाहे कबीर ने चरखा कहा हो, चाहे वो हमारे सूफी गानों में आया हो, पर ये चरखा औरत की बात करता है कि औरत जब सूत काटती थी, गांधी जी का चरखा तो है
1: जी, जी,
0: पर ये औरत का वो चरखा है कि पहले वो अपना धागा बुनती थी, उसके बाद वो उससे अपना वस्त्र बनाती थी। और वो कहती है कि चरखे की कमाई से मैं नणदल ने परणाई, चरखी
1: को मैंने
0: क्या है
1: इसकी कमाई,
0: यानी
1: एक औरत की कमाई
0: जो है वो ये। हमारे जोधपुर की भी एक आपके अनाउंसर है जो मुझे मिली थी, और मैं चाहूंगी कि वो जहाँ भी बैठे इस गाने पे डांस करें, क्योंकि चाहे वो जोधपुर है, चाहे बीकानेर, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई सा भी हिस्सा है, चरखे ने जो दोबारा एक क्रांति लाई है और औरत को जो एक फ्रीडम दी, यानी जिन पोशाकों में उन्होंने डांस किया है वो कॉम्बिनेशन तो मुझे भी नहीं पता थी
1: जी,
0: कि क्या पर्पल के साथ चटनी ग्रीन हो सकता है, क्या कत्थे रंग के साथ बैंगनी, ऐसे ऐसे बेस पहन के ट्रेडिशनल चूड़े, ये सब चीजें जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ वो पहन के औरतें आई। तो आप ये चरखा गाना मेरी तरफ से मेरे श्रोताओं को 70वीं वर्षगांठ विविध भारती पर मैं भेंट करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल, हम सुनवाने वाले हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप ध्रुव का नाम ले रही है इस संगीत से, इस लोक संगीत के लिए, तो ध्रुव ने किस तरह से लोक संगीत की जड़ों को समकालीन संगीत के साथ जोड़ा, आप क्या सोच रही हैं?
0: अब उनके जीवन में एक पुरातन आ चुकी थी इलारू, जो कि उनकी मदर इन लॉ है और वो वर्ल्ड म्यूजिक करते हैं
1: जी।
0: मैंने उनके साथ एक जो आजकल नया ट्रेंड चला कुक स्टूडियो में, निमली निमोली भी मैंने गाया है, ही इज वेरी गुड, क्योंकि वो खुद भी गायक भी है, तो वो गाने की ताकत को समझते हैं और ये भी समझते हैं हमें कहाँ तक पहुँचाना है। इंटरनेशनली हमारी ऑडियंस तो इंटरनेशनल भी है, तो वो जो उन्होंने भरा है ना, और उसकी चरखे की मादकता को रखते हुए जो इसका ग्रूव बना है
1: जी,
0: ग्रूव इसकी ताकत है। मतलब अगर ध्रुव मेरी ताकत है तो ग्रूव इस गाने की ताकत है।
1: जी, जब ध्रुव की बात चली है तो ये गीत तो हम आपको समझेंगे। हम लगे हाथ में आपकी बेटी इशिता जी की भी बात कर लेते हैं।
0: जी जी,
1: और इशिता की बात इस वक्त हम कर रहे हैं, वो भी कला और अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई है।
0: जी, वो गाती भी बहुत अच्छा है, पर पता नहीं क्यों नहीं पब्लिकली गा रही है, पर गाती भी बहुत अच्छा है।
1: तो क्या कभी ऐसा हुआ इला जी की पुरानी कला और नई कला के बीच में, या जो बदलते तौर तरीके हैं युवा पीढ़ी की ओर से, उस सोच को लेकर कभी आप दोनों में कोई टकराहट हुई?
0: किस वक्त नहीं हुई, हर वक्त टकराहट होती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल भी, वो तो उन्होंने देखा है कि मैं मेरी माँ को पुणे जी रही हूँ, पर वो महाराष्ट्र में रही हैं, और मराठी तो आपने देखा फरफट बोलती हैं मुझे बहुत ज्यादा, बिंदास भी, ह्यूमर भी अच्छा है, पर मैं उनसे बराबर ये बात कहती हूँ कि मैं पुराने को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हूँ। पुराने ने जो दिया वही हमारी ताकत है। टकराहट होती है, पर वो वाद विवाद अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं इतने भी ना मैं अपने अंधकूप में घुस जाऊं कि मैं कहूँ नहीं हम ही अच्छे हैं। तो ये जो समन्वय है ये नए और पुराने का, इशिता का मतलब ही है गॉड गिफ्टेड पावर विच कैन अट्रैक्ट एनीबॉडी, ईश्वर प्रदत्त शक्ति जो सबका मन मोह ले। तो मुझे लगता है कि टकराहट के साथ भी कहते हैं ना, पहला नाद आया था टकराहट से, तो मेरे जीवन का नाद है, नाद स्वर है, और ये टकराहट मुझे पसंद है।
1: जी, और ये टकराहट होनी
0: चाहिए,
1: हेल्दी टकराहट,
0: ना वो दबी रहे ना मैं दबी रहूं, और इससे कुछ अच्छा निकल के आए तो अच्छी बात है।
1: चलिए, तो पहले चरखा लोकगीत सुन लेते हैं, क्योंकि बात ध्रुव और इशिता की हमने की तो आप अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं भूल सकती है, आपने बातचीत करते समय उनका जिक्र किया था,
0: उनका गाना बाद में सुनाएगा,
1: और उस पर आपके विचार भी लेंगे कि किस तरह से आप गीतों को जीती हैं।
0: जी,
1: तो अभी चरखा लोकगीत सुनते हैं
0: जरूर।

0: मुझे ये कहना है केक तो बड़ा अच्छा है
1: जी,
0: लोग पता नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ जो 70 साल मन रहे हैं
1: जी,
0: यानी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, कोई अनाउंसर है, कोई स्टेशन डायरेक्टर है, सब डांस कर रहे हैं इस पे, वैसे ही जैसे राजस्थान में चरखे पे डांस होता है। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं जितने भी शोज बाहर भी मैंने किए हैं, यहाँ भी किए हैं, मैं लंगा और मांगनियार
1: जी,
0: ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये जो आपने आलाप सुनी होगी,
1: बिल्कुल,
0: तो जब ये पहली बार रिकॉर्ड कराया ना, तो मैं तो इनके बाप दादों के साथ कर चुकी हूँ। तो जब एक एक लड़का आया, उसको मैंने कहा उसने कौन सा गाना है, अरे मैंने कहा जो तुम्हारे ही गाना है, तुम्हारे दादाजी गाते थे
1: जी।
0: तो देखिए मैं उनके गाने को प्यार कर रही हूँ, और वो लोग जो है वो लोग सब कुछ आज के पॉप पॉप बनना चाहते हैं, सनग्लासेस लगाना चाहते हैं, जर्सी पहनना चाहते हैं, मैं चूड़े पहनना चाहती हूँ, मैं टैटू कराना चाहती हूँ, चाहती नहीं हूँ, ये फैशन नहीं है,
1: नहीं ये आपके अंदर है,
0: ये मैंने मुझे अगर मैं ना पहनू, सॉरी सॉरी बच गए होंगे ये, तो मैं उतारने वाली थी, पर मैंने आज क्यों नहीं उतारू, हर स्टूडियो में मेरा झुमका छूट जाता है क्योंकि वो टन टन करता है। फिर वो स्टूडियो की इंजीनियर जैसे अभी आई थी, उन्होंने कहा आपका कुछ बज रहा है, तो मैंने कहा ठीक है पर उतारूंगी नहीं, हर बार उतारती हूँ वही रह जाता है,
1: बहुत अच्छी बात। लेकिन आज आपको नहीं उतारना है, और पता है अभी जब सभी लोग डांस करने लगे थे तो लगा कि हम जैसलमेर आ गए हैं, रेगिस्तान के धुरों में आ गए हैं, आपने विविध भारती के स्टूडियो को एक तरह से रेगिस्तान के धुरों में तब्दील कर दिया,
0: बहुत मजा आया एक्चुअली, उन्होंने मुझे जोश दिलाया
1: जी। हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि आज एला जी को लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन में दूरदर्शन पर इनके गाने बहुत देखने सुनने को मिलते थे, और लिखते हैं कि आप भी एक गीत गाकर हमें बताइए क्योंकि हम आपको सामने से गाता हुआ देखना चाहते हैं, तो एक गीत आपसे हम गवाएंगे, लेकिन चूंकि
0: ये मत करिएगा क्योंकि क्या है कि ये जो उम्र का एक वफा गुजर गया, तो उसके बाद मैं अब गाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अब आप गाइए ही मत, अब आप बंद कर दीजिए,
1: नहीं हमारी श्रोता बिल्कुल एक ही लाइन आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं,
0: हाँ अभी मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए, क्योंकि कल ही मुझे डॉक्टर ने कहा था कि देखिए आपको कुछ दिन का, क्योंकि परसों मैंने एक नाटक किया था लाइव है ना, तो सच बोलना चाहिए, तो मैंने बहुत जोर का बोला, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने थोड़ा उसको डैमेज किया और यार, तो आप थोड़ा वॉइस रेस्ट लीजिएगा और कुछ नली जी मुझे करके पानी में करना है, वो सब हुआ। दूसरा मैं गांधारी का रोल बहुत अच्छा करती हूँ, तो जब मैं श्राप देती हूँ ना, तो कृष्ण जी अगर होते उससे मेरी आवाज श्राप

0: ऐसी जाती रही तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है।
1: बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है और हमारे श्रोता बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पति पर हम बात करते हैं, आपके जो अधिकारी नेवी अधिकारी रहे अरुण जी, उनकी जिंदगी जो है समुद्र और सफर से जुड़ी रही हमेशा, और आपकी दुनिया गीत संगीत के विकास से लगातार जुड़ी रही। तो कभी ऐसा हुआ कि समुद्री सफर में और आपके सुरों के सफर में कभी टकराव हुआ हो, भूचाल आ गया हो, या फिर किस तरह का योगदान आपके अरुण जी का आपके जीवन में रहा?
0: अरुण जी, मैं बताऊं, जैसे कि जहाज पे लंगर कहते हैं ना, एंकर, एंकर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो जहाज हिलने लगता है।
1: जी बिल्कुल,
0: अरुण जी मेरी जिंदगी के बहुत ही सशक्त एंकर रहे हैं। ही इज ऑलवेज एडमायर्ड। और एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पेस की, और उन्होंने मुझे ये स्पेस दी। अगर आप खुला छोड़ेंगे तो जैसे मम्मी कहती थी कि जैसे जहाज को पंछी पुनः जहाज पर वापस आए, वो हाल है। उन्होंने मुझे उड़ने दिया और मैं कभी भी इस बात को भूलूंगी नहीं। सो दैट्स अ वेरी गुड एडजस्टमेंट। वो आर्टिस्ट नहीं, पर आर्टिस्ट की कद्र करते हैं। जैसे मैं अपना उठती हूँ, मेकअप होता है, ये करते हैं, ही ऑलवेज एडमायर्स। और हो सकता है अभी सुन रहा हूँ, तो शायद अरुण का मतलब अगर मुझे करेक्ट करिए, जैसे सूर्य पृथ्वी का होता है, पृथ्वी उसकी दूरी पे, पृथ्वी की दूरी पे सूर्य घूमता रहता है, तो वो ही हमारा संबंध है। और मैंने अरुण जी के साथ तीन चार वॉयज भी किए, मतलब मैं 35-35, 40-40 दिन, उन दिनों में जब मैं बहुत यंग थी, तो मैंने दुनिया के तीन चार चक्कर काटे हैं।
1: आप अभी भी उतनी ही यंग हैं।
0: तो वो जो अकेलापन होता है ना, वो आपको और मस्की, आपके अंदर की कवित्री जगती है, आपके अंदर के सुर जगते हैं। बट ही हैज बीन नेवर हर्डल, ये तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हर औरत को जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उसको उसके लिए थोड़ी सी स्पेस दे।
1: जी, जी।
0: क्योंकि औरत जो है ना, वो खिलती है।
1: जी।
0: अगर आपको वो हर मिनट क्वेश्चन करते रहेंगे, आप सब भी आ रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, तो फिर बात बिगड़ जाती है।
1: जी।
0: या हो सकता है अगर कलाकार से शादी की होती, कहीं हमारे ईगो में टकरा जाता, तो अच्छा है, मतलब सब कुछ ठीक है। हाँ श्रोता, मेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है।
1: बिल्कुल, आपकी जिंदगी में बिल्कुल सही चल रहा है। और चूंकि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, आपने अभी अपनी बेटी और दामाद को लेकर बात की, अभी हमने अरुण जी के बारे में बात की, और आप हमसे जब फोन पर बात कर रही थी तो बार बार अपनी ग्रैंड डॉटर की बात कर रही थी कि उन्हें नए गाने बहुत पसंद है। आपने कहा टन टन तारा और इस तरह के गाने।
0: अरे मैं इसका जोक ये बता रही हूँ, उनका नाम है, एक का नाम है अमाला, एक का नाम है अलाया। अमाला जब पैदा हुई थी ना, तो ये गाना कोई मान नहीं सकता कि अरुण बजाएगी, यानी इतना बड़ा उनका खोपड़ा था और उस समय उनके बाल नहीं थे। दिल्ली मारी टंक मारी टन टन टन टन, तो वो मुझे अभी तक याद है। पर दोनों बच्चे उनके, क्योंकि पिताजी म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, दोनों पियानो बजाते हैं, दोनों गाते हैं। अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनमें से कोई रेशम करुमाल एक दिन गाए, क्योंकि बम्बई के बच्चे तो अंग्रेजी गा रहे हैं, वो मेरा दुख है। पर मैं चाहती हूँ कि वो राजस्थानी भी सीख जाए या हिंदुस्तानी, पर वो इंडियन क्लासिकल भी सीख रहे हैं, तो सुर तो है कहीं ना कहीं।
1: देखिए पसंद अभी उम्र के मुताबिक है,
0: स्कूल भी है, उम्र के मुताबिक है, पर बहुत ज्यादा वो म्यूजिक को समझती हैं, पियानो बजाती हैं, क्लासिकल सीखती हैं, और पिताजी तो बराबर लगे रहते हैं तो
1: उनको समझाने में।
0: तो भारत की संस्कृति, जरूरी नहीं कल को कोई डॉक्टर बने, कोई लॉयर बने, पर ये तो आना चाहिए, क्योंकि हमारे उसमें है।
1: आप कह रही थी हमसे डॉटर की बात, तो आपने कहा कि मंदाकिनी पुराने गीतों में प्रेम शब्दों में नहीं होता था, भावनाओं में, पुराने गीतों में ठहराव होता था, भावनाएं होती थी, इशारे होते थे, और उसमें हम प्रेम करने लग जाते थे। लेकिन आजकल तो टन टना टन टन टन तारा करते हुए हम गर्दन हिलाते हैं, नायक या नायिका से प्रेम हो जाता है,
0: शब्द और लिरिक्स रहे नहीं है ना।
1: जी जी, तो आप इसमें भी चाहती थी कि मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कितना अंतर आ गया इन गीतों में। एक जमाने में महान गीतकार किस तरह के गीतों को रचा करते थे, और आज थोड़ा सा
0: उसकी उसके पीछे की जो टीम होती थी, जहाँ इंदिवर जी लिख रहे हो, आनंद बख्शी लिख रहे हो, नीरज जी लिख रहे हो, और उस समय की हमारी सोशल वैल्यू भी ऐसा था कि कलम से और हारमोनियम तक पहुंचने का जो एक वो था, जर्नी थी, वो बहुत ही भावनात्मक स्तर थी। समाज ही बदल गया ना, कहते हैं समाज साहित्य का दर्पण है।
1: बिल्कुल,
0: तो अभी जब सारे लोग इस पे डिस्को पे डांस कर रहे हैं, तो वो धुने हैं। और मैं चाहूंगी कि एक गाना आप जरूर सुनाएं, कि वो है मैं ना पहनूं थारी चुनरी।

जो मैंने लिखा है और उन कुंवारी लड़कियों के लिए लिखा है जो अपने घर से विदा होती हैं, मारे बाबू सा ने चुनरी रंगाई, मारो जियो उस चुनरी में जाए, मैं

0: मेरी आंखों के आगे ना उनका बिना बालों का सर याद आ रहा है, वो तो लिटरली कार में मारती थी
1: जी जी
0: टन टन टन।
1: दिल में घंटी तो हमारी बजी चुकी है, और आपने तो कहा कि आपकी घंटी दिल में बहुत बार बजी थी।
0: क्या करूं, कलाकार ऐसे होते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, और राजस्थान लोग की बात करते समय दो राजस्थानी महिलाएं, अरे विविध भारती के स्टूडियो में अगर आज है तो इससे बेहतर और क्या होगा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही बिंदास है इला जी, और बहुत अच्छा लग रहा है उनका ये बिंदास रूप देखकर, आज से बड़ा सुंदर समा बंध गया है।
0: थैंक यू।
1: तो इला जी, जो बात चल रही थी कि दिन में घंटी कब बजती है, आपसे जब हम पर्दे के पीछे बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा था कि प्रेम और जवानी इस विषय पर हम जरूर बात करने वाले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मैं भी, कि लापसिंह ठक्कर का एक नाटक किया था मैंने पीला गुलाब, और मैं उसमें नायिका कहती है कि जब मैं अपने डायलॉग्स बोलती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो अपने पति से कहती है कि वही डायलॉग जब मैं रात को तुम्हारे साथ बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे वो असल का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी उधेड़बुन में लगभग पगलाई सी हो जाती है कि ये क्या है, सच्चाई क्या है, तो अपने पति से सवाल करती है कि क्या सच है, मतलब मैं नाटक के डायलॉग बोल रही हूँ या सचमुच में तुम्हें
0: रियल।
1: तो आपके जीवन में आपने पर्दे के पीछे प्रेम के कितने ही रंग जिए होंगे, और आपकी आवाज में भी जो मोहब्बत का एक पैगाम लोगों को तो पहुंचता है, महिलाओं तक पहुंचता है, एक कलाकार जब जिंदगी भर प्रेम का अभिनय करता है, प्रेम भरे गीत गाता है, तो क्या सचमुच वो प्रेम को महसूस करता है, या उनके अपने जीवन में प्रेम उसे एक रटा रटाया वाक्य सा लगता है, या रटा रटाया सा भाव लगने लगता है, आप क्या सोचती हैं?
0: ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, पर सवाल है कि हम नाटक में कहते हैं कि जब भी अपनी लाइनें कहो तो ये मत सोचो कि तुमने पहले कही है।
1: जी, जी
0: अगर पहले रटा रटाया करेंगे ना तो वहां भी एक स्टैग्नेशन, एक आपका मतलब वो फीलिंग होगी नहीं। हम जब कोई नाटक करते हैं, खास तौर से मैं, तो उस पल को मैं जीती हूँ, वो हर पल नया होता है, चाहे नाटक का 200 एपिसोड यस नाटक किया जा चुका हो, पर ये बात वास्तविकता में आप कहेंगे कि क्या यही डायलॉग, क्या मैं कहूंगी अपने आप, बताइए कि मैं घर से निकलूंगी लो मेरे लाल गुलाब मैं निकल रही हूँ। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ जब जिंदगी शुरू की जाती है तब वो रोमांस होता है, सभी की जिंदगी में हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा, फिर धीरे धीरे जीवन सामने आता है, और जीवन में जितना एडजस्टमेंट हम करते हैं वो हमारा रोमांस है। आई कैन नॉट बी ड्रामेटिक विद माई हस्बैंड, अगर वो ये सोचे कि वहाँ ये कह रही थी या ये कह रही है कि वो गैस वाले का बिल नहीं आया, तो उसमें भी कंसर्न है ना
1: जी।
0: तो वो जितना रियाज करेंगे आप भावनाओं का, और वो कहीं ना कहीं आपके जेस्चर्स बोलने लगते हैं, डायलॉग नहीं होता है, जेस्चर्स आपके बोलते हैं कि आपके कंसर्न्स क्या है, जो भावनाएं क्या हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट है, और एक मैंने पहले भी अपने हस्बैंड को कहा था और सबसे कहती हूँ कि कलाकार दरअसल एबनॉर्मल होता है, उसको आप थोड़ा तो सोच लें कि आम व्यक्ति जैसी नहीं है, ये थोड़ा अगर उसका
1: टेढ़ा होता है
0: वो सच्चा भी होता है, वो कल्पना में भी होता है, और उसकी सच्चाई कभी कभी उससे टकरा भी सकती है। एवरीथिंग

0: नौ
1: जी
0: ये सही नहीं,
1: उसको मैनेज करना,
0: उसको मैनेज करना
1: और
0: पड़ता
1: है। जी बहुत हम समय को भी अब मैनेज कर रही हैं। एक अंतिम सवाल के बाद एक लाइन आपको हमारे श्रोताओं को गा के सुनानी है रेशम का रुमाल पर। अनु मलिक साहब हमारे जाने माने,
0: नहीं उनको मत आने दीजिए, उन्होंने गाना गवाया था दरवाजा खुला छोड़ा है नींद के मारे, मैं पूरे होश में हूँ, मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा नहीं, ये गाना मैं सुना नहीं सकूंगी।
1: अनु मलिक जी आने वाली है, उनके साथ बिताए पल आप याद करेंगे जब अभी आप उनसे मिलेंगी
0: जी।
1: तो दो शब्द अनु मलिक जी के लिए कहिए और फिर रेशम का रुमाल की एक लाइन गाते हुए आप इस।
0: दरअसल मेरा मैंने जैसे कहा गला बहुत खराब है, पर आप कहेंगे तो मैं गाने की कोशिश करूंगी
1: जी,
0: और क्योंकि मुझे वाकई में प्रॉब्लम है। अनु मलिक जी के साथ पहली फिल्म मैं करी थी जाल
1: जी,
0: और वो शायद आज कह भी सकते हैं कि पहला ब्रेक उन्होंने कमर्शियल फिल्म में दिया। वैसे जगजीत सिंह जी के साथ मैंने आशियाना की थी तो वो बड़े अच्छे, इज ए नेचुरल पर्सन, मतलब वो भी हुड़क में रहते हैं और उस हुड़क में हमारा समय समाप्त हो गया।
1: तो रेशम का रुमाल की एक लाइन हो जाए,
0: आप गाना सुना दीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशम का रुमाल गले पे डाल के तुम

तो दोस्तों हमारे दरवाजे पे बहुत सारे कलाकार अनु मलिक साहब भी आ गए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं। आज का ये मैटिनी शो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का साथ बना रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैटिनी शो से अब अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में

0: अंकुम महोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के साथ लाइव कुछ ही पलों में।

0: की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार बन्नी मलिक के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती के स्टूडियो से लाइव है मेरे साथ अनु मलिक। 70वें वर्ष में विविध भारती प्रवेश कर रही है और इस समय अनु मलिक हैं विविध भारती के स्टूडियो में बिल्कुल लाइव। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई।
0: अनु जी, आपसे बात करने के पहले जरा एक बार आपका एक प्रोफाइल प्ले कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो कौन से अनमोल गाने हैं जो आपके इस सफर में आपने हमें दिए हैं और विविध भारती से पिछले कई सालों से बजते रहे हैं। उन्होंने बनाए हैं कुछ बेमिसाल गाने।

0: अनु जी, इतने सारे गाने और ये सारे एक से बढ़ के हिट हैं और विविध भारती जो है वो इस समय विविध भारती का ये कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है। न जाने कितने देश हमें सुन रहे हैं और जिस तरह की हमने पब्लिसिटी की थी कि आप विविध भारती पर आ रहे हैं। विविध भारती देश का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल है और 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और रेडियो से क्या नाता रहा है आपका?
1: देखिए, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं
0: जी
1: कि विविध भारती ने मुझे याद किया। विविध भारती एक ऐसा शब्द है जो हमारे नस नस में रग रग

0: अब आप पूछेंगे ये कैसे है? मैं उनका बेटा हूं जिनका नाम है सरदार मलिक साहब,
1: मशहूर संगीतकार सरदार मलिक,
0: जिन्होंने कमाल कमाल के गाने बनाए। बचपन से ही मुझे उनसे सुनने को मिलता था। और ये कहा उन्होंने कि जब भी विविध भारती ने याद किया है मैं वहां गया हूं, और आगे चलकर तू कितना भी नाम कमा ले याद रखना ये वो जगह है विविध भारती जहां ऐसे ऐसे संगीतकार आके अपनी कहानियां सुना के गए हैं, ऐसा कमाल का काम किया है, उन्हें कभी नाम मत कहना।
1: वाह,
0: आज मैं यहां बैठा हूं तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, मेरा 100 बार ये दिल से एक आवाज निकल रही है कि आप कितनी भी मेरी तारीफ करो, ये कहो कि आप आए हैं या मुझे आए हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं और कहता हूं कि थैंक यू आपने मुझे यहां बुलाया।
1: क्या बात है,
0: आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को अंदाजा होने लगेगा मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी जान तोड़। आप जो गाने सुना रहे थे मैं अपनी यादों में चला गया।
1: जी बिल्कुल,
0: और वो यादें हैं उन निर्माता की, ज्यादातर निर्देशक का नाम लेते हैं लेकिन निर्माता जो प्रोड्यूसर होता है
1: जी
0: कम लिया जाता है उनका नाम, वो निर्माता सब याद आते हैं। जब आपने रफी साहब का गाना सुनाया अभी मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरी उम्र थी 16 साल
1: जी
0: साल जब मैंने ये गाना बनाया था
1: पूनम फिल्म के लिए
0: जी, और ये हरमेश मल्होत्रा साहब ने मुझे मौका दिया था। फिर आपने सभी गाने सुनाए और सभी मेरे निर्देशक निर्माता सब याद आए, मेरे गायक याद आए, मेरे लेखक याद आए जिन्होंने गाने लिखे हैं।
1: हाँ जी,
0: मेरे साजन भी याद आए।
1: बिल्कुल, क्या बात है, ये कितनी प्यारी बात है कि आप अब म्यूजिशियंस को भी याद कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि संगीत एक संगत का काम होता है यूनुस जी।
1: जी,
0: आपको ये सब लोग सही मिल जाएं तो गाने बन जाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने पिताजी को याद किया। हम यहाँ ये दावा कर रहे हैं कि विविध भारती ने 70 बरस का अपना सफर पूरा किया
0: जी,
1: और इन 70 सालों में हमने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लेजेंड्स को रिकॉर्ड किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेडियो चैनल है जिसके पास यादों का एक बहुत बड़ा खजाना है, और आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं। ये तोहफा है पिताजी की आवाज। मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं पिताजी से मिला हूं, विविध भारती में ही मिला हूं जब वो विविध भारती में आए थे, और आज मैं आपके लिए खास तौर पर पिताजी की याद उनकी आवाज लेकर आया हूं। बरसों पहले की ये रिकॉर्डिंग, 1 मिनट का टुकड़ा मैं आपको सुनवाता हूं।

ये गाना के जिसने गाया वो भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट था। उन्होंने कहा, मलिक साहब मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन हर एक ने कहा कहीं ना कहीं आप फीके पड़ते हैं। मैंने कहा अगर आप मेहनत करें, जी मैं करूंगा, तो आप 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास रोजाना इस कुटिया में आकर बैठिए। 1 मंथ आप बिलीव करिए कि वो इंसान मेरे पास बैठा और हर वक्त ये पूछता था क्यों कोई कसर तो बाकी नहीं।

0: मुझे कैसा लगा पिताजी की आवाज सुन के?
1: मैं एक्चुअली भावुक हो गया हूँ, क्योंकि मैं ये गाना, मेरी माँ कहती है, तुम माँ भी नहीं रही, माँ कहती थी कि तू 4 साल का था जब गई जी घर पर आया करते थे, तो डैडी की गोद में बैठता था।
0: अच्छा।
1: और रिहर्सल होती थी सारंग तेरी याद में, तो वो दिन ऐसे अब याद आ रहे हैं।
0: जी जी।
1: और जिस अंदाज से डैडी ने ये गाना बनाया और जो गाया है मुकेश जी ने, और मैं उनका भी तारीफ करना चाहता हूँ जिन्होंने गाना लिखा, भरत व्यास साहब का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल से छाव, घूंघट में जब चांद था मेहनती लगी थी पांव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। डैडी एक महान इंसान थे, भरत व्यास जी, मुकेश जी, और ये गाना आज ऐसा लगता है कल रिकॉर्ड किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: इतनी ताजगी है इसकी इसकी तर्ज में कि वो कूट कूट कर मेरे अंदर भरी हुई है।
0: जो
1: वो सीखा वहीं से आया है, और मैं अपने फादर को नमन करना चाहता हूँ और उनकी यादों में ही मैं रहता हूँ और आज भी काम करता हूँ। बल्कि मेरी जंग भी उनकी वजह से हुई।
0: जी।
1: जब उनको मुकाम नहीं मिला तो मैंने कहा मैं नाम कमाऊंगा डैडी आपके लिए।
0: बिल्कुल। और आपने वो करके दिखाया, और मुझे याद है कि जब मुलाकात मेरी हुई थी तो वो इतनी आपकी तारीफें करा करते थे और एक गर्व से भरे हुए थे कि मेरी बेटी ने वो मकाम हासिल किया जो जिंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया हासिल करने का।
1: बिल्कुल।
0: और चूंकि यादों की बात है तो वो गाना जो आपने इसलिए बनाया शायद ताकि जब भी कभी हम पुराने दौर को याद करें तो इस गाने को दोहराएं कि यादें याद रहे।

0: जज्बाती मूड पर हम पहुंच गए, पिताजी को याद किया। और वही बात, ये गाना आया सुभाष घई की फिल्म यादें। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरोज के गाने आपने बनाए। एक वो दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक वो दौर था जब आपने अमिताभ बच्चन के लिए लगातार गाने बनाए, आगे भी बनाए, तो वो यादें बांटी यादें हैं।
1: देखिए, ये मां सरस्वती की कृपा है। मैं बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट था
0: जी
1: ऐसे महान सुभाष जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना। उसकी जद्दोजहद बहुत हुई
0: जी,
1: आसान नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने बड़े जबरदस्त संगीतकार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब
0: जी,
1: आर डी बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, जो कमाल कमाल के गाने बना रहे थे। उनके सामने फिल्म मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था
0: जी जी।
1: लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर गाने बनाने की एक चाह है
0: जी।
1: मैं गाना बनाता था, उसे कैसेट्स में रिकॉर्ड करता था, बाजा लेकर चल पड़ता था।
0: यस,
1: सुभाष घई साहब का म्यूजिक बड़ा कमाल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी हर फिल्म का म्यूजिक कमाल रहा है। तब जाके जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, अभी जो गाना है नगमे हैं शिकवे हैं, इसमें आनंद बख्शी साहब बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बख्शी साहब ने कहा कि सुभाष जी सुनाओ ये लड़की ने क्या बनाया। मैंने जब ट्यून सुनाई उनको
0: जी,
1: मैंने ऐसे सुनाया,

0: अचानक रुक गए। बक्सर कहते हैं, अनु मुखड़ा यहीं खत्म हो रहा है, मैंने कुछ और आ सकता है। मुझे भी ये कहा, मैं और क्या लेके आया है कि अचानक मैं समझ गया बख्शी साहब क्या चाहते हैं, वो लिखना और चाहते थे।
1: हाँ, उसके आगे
0: तो मैंने आगे ऐसे ही ऐसे गाया, और उसके बाद जो तर्ज उनको इतनी पसंद आई, लिखने के बाद गाना वो सुभाष जी की तरफ देखते हैं आनंद बख्शी।
1: हाँ हाँ,
0: बख्शी साहब बोलते हैं, सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह वाह, क्या स्टेटमेंट है ये
0: बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कहना सुभाष जी को

0: लिखने के बाद गाना वो सुभाष जी की तरफ देखते हैं आनंद बख्शी।
1: हाँ हाँ,
0: बख्शी साहब बोलते हैं सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह वाह, क्या स्टेटमेंट है ये।
0: ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कहना सुभाष जी को